0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: मोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: लाए कफ़ा हो लाए

ए हिप हॉप मिलावे की इंडो कैनेडियन हिप हॉप आर्टिस्ट इश्क बैक्टर या इंडिया के मशहूर लवकियों तेरिया सुनीति चौहान गुलिगिन की आफवा लावे मिलावे के फाहतु के वाह के की वे शाओगेरे वाह के इश्क बैक्टर कुरी के अमिल लवतकं इदेवे थारुही बे नुदिबुमुं इन्वेस्टर के ही तेरे का मैं को सुनीति चौहान मी प्रोजेक्ट आ गुलवैगिंग उफेदी मी लवा वेगें दिए वारा बोडो मकबूल का मिल दिबुने इच्छका लवा नुकुतु मैं को गिनबे के समाल का मिलावे होटुनो वर फसे हैं दसवा ए हिप हॉप मुझे प्यार तो कर फद केची बैतका मजा वीडियो इन ए जमानु के मजा रूह वर फुरी हमे तक वैदिंग इंडिया के पॉप म्यूजिक का हिप हॉप के स्टाइल फुलावा मंगाए दोस्वरो मिल लव फाहा कुरेवुनी आम रोमांटिक पॉप लव तका हिलाफा स्ट्रीट हिप हॉप स्टाइल के मजा गोइगंडो एकुलेवे तफातो लवे के गोतुगा मे गली बॉय फद फिल्म तकुं इंडिया के हिप हॉप आम वुमगे मा कुरिन फेनिगें दिया मिफद लव तोगे मिसाले MTV India adi channel viin gina gina milava dakka mundia milave bodati e board take nulibunu namves milave vani e zamanu ke amila lavataka libene emme bodu e sharaf kam gawa cult classic ke daraja libifa milave abhegotum wahaka dakkamun ishq bacter bonefawani ena beenuvi ingiresi hip hop adu han aadave fanuwa mi hunaves rap music fase hen visneene kuin hedun kama हिंदी बस मिलवें एक कोलमुंग हमें कनी हुलंगों के स्टाइल कॉपी करुँ के बदलोगा अडवा हामी हुनंग ए ई एमी हुंगे आमिल ला इच्छे के गोतु का बाला करने वेने फदा उफेद्दु में उफेद्दुनु कमा इश्क बोनी ए हिप हॉप मिलवा हंदानु को हुननी की वेगें कं सीधा नेंगुनस मिलवे की सिकुंडी का अबदुस हारुलाफ होने जातुगे खास सलावे

मी शोग एहुन तेरिंग इदला लावता चहाल दे मुंग हम दानी मेसेजे के जरिए न लावे का रिक्वेस्ट कोल लाफ या एलो विस चहाल दे मेसेजे किया दे ना हूँ गे मेसेजे में डियर सोलमेट आई एम नॉट इवन एबल टू हियर फ्रॉम यू एनी मोर इवन बिफोर देयर वर टाइम्स यू वुडंट टॉक टू मी एंड आई एंडेड अप लूजिंग यू बट नाउ इट फील्स लाइक सो मेनी डेज हैव पास्ड विदाउट हियरिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम यू Tell me, baby, do you really not need me in your life anymore? Have you finally decided to close the chapter of our story as if everything we shared never meant anything? Baby, if you no longer want me, please tell me, don't leave me here. All I want is to hear from you, not just once, because this silence is making me feel like I am slowly becoming a stranger to someone who once meant everything to me. Play Tu Hai Ke Nahi song from Nahu to Soulmate. మీ లవయకి ఇతరు లవేం హమ జహాల దీఫ బద్దు కొల్లన అది మెసేజ్ కొర్రవేణి ఇంకే షోగా మీ లవే జహాలం వేణు జమ్మ వాణం.

अरे ट्रैफिक बैंड के लौत होगे तेरे मी फारो मी गेनेस ते लवे की ट्रैफिक बैंड उन लाइव कुन गेनेस ती फवा अलवे मी गैंगन कमी के सोल आहारो कुरिंग मी बैंडो किया दी फवा लवे ये था

0: ए खियालों ए कणिवेस बयां को रंदती हिंखम जो में लिबि गेंदी ए
1: शल वी
0: गेगे मैतुरा दिमायं इशारे कोल्लमुं सोहन पुन्ये जोहन के सुवाल आयराय नगा गनेबुने जोहन के फहतुं आयरा हिंगा गती आदिवेस एफहरु बगीचायं अवस नजर इते मुन्ने एरु बयां को रंदती शऊर तकें आयरा के लोलु गबी ए एने के मुस्तगबल जोहन ना कुळवा लेवमुं कुरिं ए हित वेरिविगें दनी उफा विरिकमे फोनी उम्मीदु थके नमवेस मिफहर एने के हित तूणु रिहुमें युसास कुरेवने वगुती उफले के राहतक वेदानेती हि बिरुकन्नम फेशी ए इहुसास तं मूनुं फाळवियनु देन आइरा हिनितुं वेली ए कुरियं अळमुंदिया कोम्मे फियवळकायकु नफ्सुगे हमजेहुं गेल्लिकें दाहें वेस हीवी ए